0: ले अमला कुश नराजु निम दोसा तो दोस कु आ
1: अमला
2: ओ
1: ती आशा लागे सुएबे छक्षे थारी सिम्बुश तु रिबे
0: पाली जिस
1: प्लीजा प्लीजी लागु सिमुन जुगा
0: के चेमसो या नाजुदा लागु जुगा जु ने जों पाली जोश दे आ
1: यंग आ
0: जोश दे सिम्बुश दे किरानी गा जोश दे आ
1: अमला ग्योस नादा यो मेयेशे राजु से चुंगा पाली सा टा सिंगी
0: 让他是路啊。嗯。下是路应的。嗯。什么什么是可以？呀。阿夏拉特谢呢？大大的。天天让他写下雨。
1: 谢的，天大谢。他的最高成就，如果变做的，军队人比较厉害，马赛新中，如果变做的，组织个团队的，他能做点个团队来，就可以，对多大没别偏少些的。
0: 让谢大姐比呢，老马日头我们就同事吧。他是呀，呀，姐子，你决定提出来了，难得去看人生意。
1: 今天让谢大，接了七十三块的鱼。
0: 你那天啥？如果公司去做这鱼，全家装在如果我，我们学校两个的，如果我，天啥都是两大，那不咋过做鱼的。
1: 你这前面呢？还是呢？全家重组牌的，如果能不提，这就切通是吧？
0: 他是，云霞，俺想叫个对啊。
1: 讲个。

0: ये तो दो बाला लो कौन तो थक रहा बला तो दो बाला के क्यों नॉप हो सी चे तिड़े ही ने बाला के सवादे सो जोब रेगा बाला लो तुम्हें कसे चुयो मारे अमला लगवा तो बाला अमला चोम ने सो कॉल न्यूज़ कसे यो मारे 你那捏巴拉了可真真不是你这不是的你这不是的那他都没捏巴拉了是不是我了气气之下哎呀那全说起来那全说起来你也怕吗你给我随便给这节奏不是那别拉他不是
1: 你阿家他拉他不送，你就一瓶拉他不送。王辉，你这就是什么么穷？我穷的，莫拉拿了草罗穷不人，弄俺来这粗罗用的，让俺们老半夜难度。
0: 阿家，你我那老不行的，你已经过三十岁了，你说了拉他不的。
2: 没拉他吧，那是说拉他呗，没去几个月。阿姐，阿姐那个都当俺我妈了，这个月。
3: 光辉，这样对那面念我妈冲出去，对那面嘞，光辉，阿姐，
2: 阿姆罗，阿姆罗。
3: 东东，
4: 是，你最近不得这张可把气吧？
5: 包了我女神长的亲笔。
6: 东东，我家里给下雨，让你我都把这么子个雨。
4: 看女儿。